0: डार्लिंग हो गया इस फुटबॉल के टूर्नामेंट में ना, और लामिन यमाल उसका नाम है, उसके फादर मोराको के हैं, मदर उनकी इक्वेडोर गिनिया की हैं, और वो मिक्स हैं वो। लेकिन पिछले चंद सालों में वो 15 साल की उम्र से उन्होंने इतने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। और मैं इंटरव्यू देख रहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत प्रो पलस्ताइन है और वो खुल के बात करता है बिल्कुल। तो उसने बड़ी तारीफ़ की है उसकी, उसने कहा कि ये ऐसा नौजवान है, अभी ये 20 साल का भी नहीं हुआ और ऐसे ऐसी वो फुटबॉल खेलता है कि जो किसी की सोच में भी नहीं आ सकता। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। तो फिर मैंने पिछले 2-3 दिन में वो जो है वो उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में काफ़ी वीडियो देखे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
1: बादशाह साहब, ये तो बिन्यामिन जमाल जो है बेसिकली ये पिछले जो यूरोपियन कप हुआ था
0: उसमें भी, हाँ
1: एग्जैक्टली उसमें जो है वो ज़्यादा नमूदार, क्योंकि स्पेन की टीम ने जो है वो इतने यंगस्टर उस टीम में इकट्ठे कर लिए थे और उनको काफ़ी कामयाबी भी हुई थी और ये यूरोपियन चैम्पियन भी हैं और आप वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। लेकिन बादशाह साहब, ये वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हुई हैं।
0: ट्रंप साहब ने भी इसमें फटा किया।
1: ट्रंप साहब ने जो है वो उनकी अमेरिका की टीम के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दे दिया गया, जिसको उन्होंने सस्पेंड करवाया फोन करवा के। लेकिन उसके अलावा बादशाह साहब, अगर आपने कुछ मैच देखे हों तो वो फुटबॉल में भी कहते हैं कि उस सेंसर लगा हुआ था वो वापस घूम के आ रहा था। उसके अलावा
0: नहीं, जैसे देखिए ये सेंसर वाली बात है, ये फुटबॉल पाकिस्तान में बने हैं कोई सेंसर, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी चिप लगाई है जिससे रेफरी को आसानी होती है,
1: मॉनिटर करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल मॉनिटर करते हैं।
1: तो लेकिन बादशाह साहब, उसके अलावा जो है रेफरी के रवैये जो वहाँ पे देखे गए हैं
0: वो अर्जेंटीना के हक में थी बहुत।
1: एग्जैक्टली इसी तरह एक और फ्रांस और पुआक्वाय का जो है मैच था, जिसमें पुआक्वाय की टीम ने इतने फॉल्स किए लेकिन उनको एक येलो कार्ड भी नहीं दिया गया, और फ्रांस की टीम ने जो है वो 3 या 4 फॉल्स किए थे, उनको जो है हर फॉल पे जो है उनको येलो कार्ड दिया गया।
0: तो इजिप्ट की टीम के साथ बड़ी
1: इजिप्ट की टीम जब उनके साथ मैच हुआ था अर्जेंटीना का, वो इतना यानी आपको लग रहा था कि ये रिक्ट है।
0: वो ये चाहते थे कि ये जो है मेसी जो है अर्जेंटीना के बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, वो चाहते थे कि उनको ये मैच जितवा जाए, क्योंकि उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी बड़ी कि अब वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी 39 ईयर्स एज है, वो और रोनाल्डो दोनों जो हैं उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप था। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेसी को ये जो है ना ये एजाज़ मिलना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं कि ख्वाहिश तो बड़ी होती है, लेकिन रास्ते में लामिन साहब आ गए। उन्होंने, मैं फुटबॉल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे दो चीज़ें मैंने वो देखी हैं मैच में। जब अर्जेंटीना मैच हार गया तो वो मेसी साहब बैठे हुए रो रहे थे उसके ऊपर ग्राउंड पे ना, और सारे स्पेन के जो प्लेयर थे वो बड़ी उछल कूद और बड़ी खुशी मना रहे थे। तो इसने देखा कि वो मेसी साहब रो रहे हैं, तो वो वहाँ से चल के आया। सबसे पहले तो उसने ग्राउंड के अंदर बैठ के
1: सजदा किया
0: और दुआ मांगी और शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद फिर वो मेसी के पास गए और मेसी को उठा के उन्होंने गले लगाया और कहा आई एम सॉरी। और मैं समझता हूँ कि उससे उनका एक किरदार जाहिर होता है। और फिर आपको पता है कि वो लड़का जो है वो स्पेन के बार्सिलोना के एक ऐसे इलाके से है जो बहुत गरीब है, जिसमें गैर मुल्की काफ़ी रहते हैं, बड़ा रन डाउन एरिया है, और वहाँ पे उसने सड़क के ऊपर खेल के वो जो है वो फुटबॉल सीखी। लेकिन वो उसको कभी भूला नहीं। आपने देखा होगा कि जब वो जीतता है तो वो एक निशान ऐसे करता है ना, वो 3 उंगलियाँ 3 और 4 वो उसका जो वो पोस्टल साइड है, वो जो नंबर है उसका, वो आखिरी 3 जो सिफर है 3-0-4, तो वो उसको याद दिलाता है कि मैं उस जगह से हूँ और मैं कभी भूला नहीं है। फिर एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब उसके पास, पता है उस स्पेन ने ये बार्सिलोना ने उसके साथ जो मुआहदा किया 5 साल का, 300 मिलियन यूरो। तो उसने पहला, पता काम किया, जिसको पहली सैलरी मिली उसने अपनी दादी के लिए,